लाख आए मुसीबत तो परवाह नहीं, लाख टूटे सितम उसका शिकवा नहीं, चाहे बदले जमाना नहीं उसका गम, चाहे

ओ अल्लाह, लाख आए मुसीबत तो परवाह नहीं, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ टेस्ट कैन कम अपॉन मी, आई डोंट केयर. ऑफ कोर्स वी आर एक्सट्रीमली वीक, वी मस्ट नॉट आस्क अल्लाह तबारक व तआला फॉर टेस्ट एंड ट्रायल्स, वी मस्ट आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड हिज मर्सी. बट ही वॉज कमिंग थ्रू दिस काइंड ऑफ डिफिकल्टीज बिकॉज वी गॉट इस्लाम ईजली, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म from our parents and wives and children and families. Nobody rejected us because we are Muslims. We are born in Muslim homes. So we don't appreciate this Islam and Iman. Now this person coming from Hinduism into Islam and the whole community turning against him. So he only knows what he was going through. Now to remain steadfast in such conditions is not an easy thing. तो इसे लाख आए मुसीबत तो परवाह नहीं, लाख टूटे सितम उसका शिकवा नहीं. ओ अल्लाह, आई एम नॉट कंप्लेनिंग टू यू अबाउट ऑल दीज पीपल हैविंग टर्न्ड अगेंस्ट मी, आई एम नॉट कंप्लेनिंग टू यू दैट दे आर इल ट्रीटिंग मी, दे आर एब्यूजिंग मी, दे आर स्वेरिंग एंड कर्सिंग एंड क्रिटिसाइजिंग एंड रिडिक्यूलिंग एंड मॉकिंग एंड टीजिंग, आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट दैट. लाख आए मुसीबत तो परवाह नहीं, लाख टूटे सितम

तेरे गुलिस्तान में सब गुल हैं, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूं। मुझे भी कुछ

सिर जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।

जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। यही तुझको धुन है रहूं।

अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह जल्ल जलालू।